0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 B23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिना तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स ले। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

0: के दीवार।
1: रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर, मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 B23
2: लाइसेंस नंबर 10394।
3: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
4: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 647-446-1616। उमरप्रीत चावला।

क्या बात है, बड़ा शानदार गीत यार, मजा आ गया सुन के। ते मैं लाइन सुन रहा सी विच, ते कहंदे है मोरां वर्गी तोरां तुरदी हिरनी वर्गी कुड़िए नी। ते मैं सोच रहा सी मोरां वर्गी तोरां तोर तुर रही है ते हिरनी वर्गी, ते दिमाग दे विच कन्फ्यूजन बड़ी हो गई भी यार पता नहीं केड़े साहब दी किदां दी कुड़ी दी गल कर रहा है।

महेंद्र को सपूत तेरे रहा पंच बेखा दी एक गरीबा राख राखन हारे खेत कर है हर बहुत संताव है आया शरण तुहारे कर कर हारियो अनेक पौ पाती चोटह कत होना ही एक बात सुनता की ओटा साध संग मित जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत लय ओए महाबेखा की सहज सोहेली बारी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी कर स्नान सिमर प्रभु अपना मन तन भय अरोगा कोट बिगन लाते प्रभु सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभु बाणी सब सुभाख्या गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरै पूरा क्या रहाओ साचा साहेब अमित बढ़ाई भगत बचल दयाला संता की पैज रखदा आया आद बिरद व्रत पाला हर अमृत नाम भोजन नित पहुंचो सर्व बेला मुख पाव जरा मरा ताप सब नाका गुण गोविंद नित गाव सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट भई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की वडियाई सूरत माला बनवा सुख मंगल कल्याण सहज तुम प्रभ के चरण निहारिया राखन हारे राखियो मारे सतगुर नाम उतारिया उबरे सतगुर की शरणाई जाति सेव न बिरथी जाई रहा कर मह सुख बाहर पुर सूखा

रोग सपना से कभी हम कृपा तारी। आज पहर अनाथ स्वामी पूरण काल हमारी, हर जियो तू सुख संपत राख ले हो पाई मेरे को। प्रभ आ गए अंदाज जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरु पूरा पेटियो मिटियो सगलिया देसा। सिमर सिमर गुर सतगुरु अपना सगला रूप मिटाया, ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे पल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरण पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला।

संत हो हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरा नाम गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभु भय दयाला दुख मिटया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उधरिया सब संसारो मेरा सतगुरु रखवाला होआ कार कृपा प्रभात दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ

0: यह
1: कठिन रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश, खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
2: सूर्य कवच स्तोत्र।
3: अस्य श्री आदित्यवच स्तोत्र महामद्रस्य स्थितवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः देवता कृतं सूदं शक्तिः।

पदाभ्यं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वच्च सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

उत्सव का धर्मसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, या अली मदद। अब आपके लिए का त्योहार आने वाला है, अगस्त 27 को पूर्णिमा है। तो सब पहले तो अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है अगस्त 15। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिल्ली में आज तो शनिवार का दिन था, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने सेलिब्रेशन किया। और आपके लिए, आपको सभी को हमारे इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई सभी को। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया आपको बैक यार्ड में बाजू की चाहिए, किचन में गैजेट्स बढ़िया सी चाहिए, वो तो आपको जाना होगा। जी हाँ, आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इन मॉडल एंड पर रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप सभी को हमारे जितने स्पॉन्सर हैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो उनका जो दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में, आप उनकी स्पेशल राखी स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिएगा। अपनी बहन को अगर बढ़िया सा गिफ्ट लेके देना चाहते हो राखी के लिए, तो आप अभी से ऑर्डर अपने बुक कर लीजिए। और अब अगर आपने मूव होना है, तो मूविंग के लिए HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। और उनका आप नंबर लिख लीजिए, 416-524-7004 416-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर लीजिए और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं HK मूवर्स। और आपने अगर आप लंदन में रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कुरियर डिपो अब आपके लिए गोर रोड पर मौजूद है। आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो आप masterconditiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवाना है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 सिस्मा रोड मिसिसागा में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हो। 905-625-0055 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असीं लैके आए हां कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सारियों।

0: सारे फूलों की राहों में सारे फूलों की यहाँ कहे सावन, यहाँ कहे सावन बालों में खिलती है कलियां सालों में।
1: ये जो गाना है वैजयंती माला दिलीप कुमार 1957 नया दौर फिल्म की उसके ऊपर फिल्माया गया था, ब्लैक एंड व्हाइट थी, रफी साहब ने कमाल कर दी, फॉर एवर ग्रीन सॉन्ग है ये। तो आइए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो एक और बहुत ही बढ़िया से यह गाना है, लेट्स गो टू
2: भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत दिखलाई भारत तो यूं चांद जाना मिलता धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहां पहले आई सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जब कला अपना भारत वो भारत है नीचे संसार चला और बढ़ा जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे ये और बढ़े फूले बसंती

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अब आपके लिए

तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सत्संग में। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम प्रे करते हैं कि हमारे भारत की लोग और हमारा भारत दुनिया में आगे आगे जरूर बढ़े और आसमान को छूने वाली यात्रा किया करे। हमारे देश के जो ऐसा होता है कि हम जब कहते हैं कि हमारा भारत, भारत हमारा वही है जो भारत के लोग हैं। अब भारत के लोग जो हैं दुनिया भर में सभी जगह पे अपना नाम कितना बड़ा रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत ही हाईली बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड जो लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वही है हमारा भारत, समझ लीजिए। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। रात को भी हम 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे और इसी तरह इंडिपेंडेंस डे को मनाते रहेंगे। और मेरे वतन के लोगों, अगर ये गाना लता जी का नाम अब प्ले करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन अभी भी रहती है। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत का भला। इंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: जायते सदा जन्मलग्नस्थितालोकान्सर्वान्नाशयते प्रभु इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्चकवचौ सम्पूर्णम्।
1: ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलंबा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ज्वाही संपूर्ण जगत विश्ववंद्यं महाघोरां त्राहि मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानो त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतं चिदग्रीमंडल संभूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वं राजगौरवं त्वदीये कुले जात है त्वामेव शरणं गत है त्वत्वत्सलोहं आढ्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयात् मंगलानुशासनम् कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्रीकुलदेवी स्तोत्रम् श्रीकुलदेव्याचरण अर्पणम् अस्तु।

अस्य श्री विचित्र वीर हनुमन्माला मन्त्रस्य श्रीचन्द्रोपलाम्योगः ओम राम अमुष्टाभ्याम नमः ओम रीम तर्जनीभ्याम नमः ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः ओम रीम अनामिकाभ्याम नमः।

सुषेन्द्रगामिन प्रदान त्रिधास्य रूपधारिणीं जले स्थले निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं विशिष्ट सृष्टि

0: पैंट्स पर और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है अभिनंदन है सभी को नमस्कार सत श्री अकाल अदाब जय साई राम या अली मदद और आप सभी को हमारे इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद रखती हूँ कि आपने भी हर शहर में यहाँ पे कनाडा में इंडिया इंडिपेंडेंस डे सभी मंदिरों में तो मनाया जा रहा है और हर जगह कोई सेलिब्रेशन जरूर हो रही है तो आप भी जरूर उसमें शामिल हो जाइए और अपनी जो देशभक्ति है उसको थोड़ा जागृत करिए।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। जिनको ये मालूम नहीं हो शायद मीनिंग वंदे मातरम का मतलब हमारी मातृ माँ को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो यही इसका मतलब है। तो मैंने कल के प्रोग्राम में आधा जो 15 अगस्त 1947 की जवाहरलाल नेहरू जी की जो पहली स्पीच थी उसको मैंने आधा कहा था कल, तो आधा आज मैं कहूँगी। तो आइए पहले आपको ये बड़ा प्यारा सा धुन सुनाते हैं।
1: प्रोफेसर छपाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं।

कसम को थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं।

ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, बढ़िया आप बारबेक्यूज, आउटडोर फर्नीचर या फिर अपने घर का फर्नीचर वन ऑफ ए काइंड बढ़िया क्वालिटी बढ़िया प्राइस पे लेना है, राखी की स्पेशल सेल आपका फायदा उठाइए। आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए topchoiceelectronics.com पे जाइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने उनकी जो लोकेशन है आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी को राखी की और इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं उनके पूरे स्टाफ की तरफ से। अब मास्टर कोलिजन दीपू की तरफ से, स्काई डोम की तरफ से, अगर आपने बढ़िया अपना कोलिजन का काम करवाना है, अब लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपकी खुशी की खबर आपके लिए ये है कि मास्टर कोलिजन दीपू गोर रोड पर मौजूद है लंदन में। तो आप वहाँ पर जाइए, अपनी कार वेंट आपको आपको ले बना के देंगे। masterclinicdepot.com पर जाकर आप और जानकारियाँ ले लीजिए। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुँचाते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए 416-524-8804-16-6524-6704। तो ये है आपके लिए HK मूवर्स। और आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 905-625-0055। आपने लाइव कुकिंग करवानी है, खाना ऑर्डर करना है, न्यूली रेनोवेटेड न्यू इंडिया पिज्जा रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट भी मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको अभी राखी के लिए आपको मिठाइयाँ लेनी है 905-814-1703 पर कॉल कीजिए 9058141730 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे बड़े जोर शोर से मनाएंगे आप सभी के साथ। बहुत कल से सेलिब्रेशन, आज पूरा दिन आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे अपने आप को, तो आप भी खूब इंजॉय कीजिए। और ये जो अपने फॉरएवर जैसे कि ग्रीन सॉन्ग है जो, उनको सुनिएगा आप, सुनिएगा ये गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये संजीव कुमार और सुनिएगा।

हमको कितने तारीफ महल है और बनाने, कितने ही अजंता हमको सजाने, अभी पलटना है रुख।

0: नहीं उमंग अब है नई जवानी हम हिंदुस्तान
1: हिंदुस्तानी
0: हम हिंदुस्तानी।

जी हाँ, हम हिंदुस्तानी। तो अब आपके साथ में जो आधी, जैसे मैंने कहा था कि आधी जो जवाहरलाल नेहरू जी की कायस्थ वाली, उन्होंने पहली अगस्त 14, 1947 में उन्होंने ये पहली स्पीच बोली थी, तो उसी को मैं दोहराने जा रही हूँ। येट द टर्निंग पॉइंट इज पास्ट एंड हिस्ट्री बिगिंस ए न्यू फॉर अस, द हिस्ट्री विच वी शैल लिव एंड एक्ट एंड अदर्स विल राइट अबाउट। It is a fateful moment for us in India, for all Asia, and for the world. A new star rises, the star of freedom in the East. A new hope comes into being. A vision long cherished, materialized. May the star never set, and that hope never be betrayed. We rejoice in that freedom. Even though clouds surround us, and many of our people are sorrow-stricken, and difficult problems encompass us, but freedom brings responsibilities and burdens, and we have to face them in the spirit of a free and disciplined people. On this day, our first thought go to the architect of this freedom, the father of our nation, who embodying the old spirit of India, held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. We have often been unworthy followers of his and have strayed from his message, but not only we, but succeeding generations will remember this message and bear the imprint in their hearts of this great son of India, magnificent in his faith and strength and courage and humility. We shall never allow the torch of freedom to be blown out, however high the wind or stormy the tempest. Our next thoughts must be of the unknown volunteers and soldiers of freedom who, without praise or reward, have served India even unto death. We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us, whatever may happen, and we shall be sharers in their good or ill fortune alike. The future beckons to us, but whither do we go and what shall be our endeavor? To bring freedom and opportunity to the common man, to the peasants and workers of India, to fight and end poverty and ignorance and disease, to build up a prosperous, democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. So we have hard work ahead. There is no resting for any one of us till we redeem our pledges in full, till we make all the people of India what destiny intended them to be. We are citizens of a great country on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard, all of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights.
privileges and obligations. We cannot encourage communalism for narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action. To the nations and peoples of the world, we send greetings and pledge ourselves to cooperate with them in furthering peace, freedom, and democracy. And to India, our much-loved motherland, the ancient, the eternal, and the ever-new, we pay our reverent homage and we bind ourselves afresh to her service. Quote unquote. तो ये थे उनकी जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन पहली बार अगस्त 14, 1947 को. तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं. उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी. अब अगर आप अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, आपको बढ़िया बढ़िया टीवी चाहिए, लेटेस्ट एडवांस्ड और लेटेस्ट किचन गैजेट चाहिए, आउटडोर आपको बारबेक्यू चाहिए, सोफ़ा बढ़िया सा चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंगर पर रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल पे है. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी जो राखी स्पेशल सेल है वो देखिए और फिर अपना ऑर्डर बुक करिएगा. जी हाँ, तो 905-799-0045 पर कॉल कीजिए. 9057990045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हैं. तो अब अगर आपको कृष्णा वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना बेचना है तो आप निशीर खेड को कॉल कीजिए 519-546-1207 519-546-1260 पर आप कॉल कर सकते हैं. और अब आपने किसी किस्म की भी आपको आपने कलिजन का काम करवाना हो तो आप वहाँ पे चाहिएगा. आप किसी तरह का भी मास्टर कलिजन डिपो आपके लिए खुशी की खबर. अब लंदन में गोर रोड पे मौजूद है. तो masterclisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो और आपका कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं. बहुत सालों का उनका तजुर्बा है. मास्टर कलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है. तो आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा ही बना देते हैं. अब अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स आपके लिए कैनरा भर में मूव होने में आपके मदद करते हैं. तो आप उनको कॉल कीजिए, आज ही अपना ट्रक बुक कीजिए 416-524-8400-4164-6704. तो लेट्स गो टू दिस.

काल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम मलाए है तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने पाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दांव पेच से रखना नवाजता, दुनिया के दांव पेच से रखना नवाजता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न देखो ये तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान।

0: हर कदम उठा नजरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों समाने।
1: आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। और आप सभी को एक बार फिर से इस इंडिया की इंडिपेंडेंस 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एंजॉय कीजिएगा जो भी आपके शहर में एक्टिविटीज हो रही हैं, वहाँ पर जरूर कोशिश करिए जाने की, अपनी हाजिरी जरूर लगवाइएगा। तो अब आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं। So, we will continue the celebration with you through this हवा की जो लहरें हैं उनके ज़रिए हम आपके रूबरू होते हैं, तो इसी के ज़रिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।

ये जो गाना है इसको हमें अपने मन में रखने की जरूरत है आगे फ्यूचर के लिए, और हमेशा हमें ये सोच अपने आप की बनानी चाहिए, सोचना चाहिए आने वाले समय के लिए।

मिटा सकते नहीं, माता जी को हर दिल मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, ये नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है।

अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं।

0: की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी बदलते जाएंगे,
1: बदलते जाएंगे।
0: अगर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं,
1: हम भी ताकत से नहीं।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
2: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिहा क्यूट जिहा घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
3: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
4: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: चंगी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत चंगी सलाह नाल हुंदी है, ते ऐदां दी सलाह तुसी हर किसी तो नहीं लै सकते। इस करके रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे हरजिंदर गिल नाल अज ही गल करो। चाहे तुसी फर्स्ट टाइम होम बायर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दी भाल विचो, प्रॉपर्टी बाय और सेल करना चाहुंदे हो, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स विच इन्वेस्टमेंट या लुकिंग फॉर रिटेल यूनिट्स, तां तुसी बिल्कुल ठीक ना सुनिया। Harjinder Gill, with vast variety of marketing, promotions and showcasing your next hot deal, Harjinder Gill is the name to call at 647-400-6862 or visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
3: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000188 बार 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
4: जी दोस्तों, राम्स पंजाबी वीकेंड शो का समा हुण इत्थे समाप्त है। आपां एक स्टेशन आईडी लैने आ जी, उस तो बाद फिर जुड़दे आ प्रोग्राम नजरिए दे विच।
5: टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो, असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी। शायद
6: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो, अते यकीनी बनाओ कि ओह ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
7: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
8: ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਰੇਡੀਓ ਨਜ਼ਰੀਆ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। जिंदगी नाल जुड़े हर आम अते खास मसले उते रखदा है रेडियो नजरिया एंड ओपिनियन तिखी नजर। सो लाओ पेश है चंगे गीत संगीत ते इंफोटेनमेंट नाल भरपूर रेडियो प्रोग्राम नजरिया एंड ओपिनियन।
9: दिस प्रोग्राम इज अ प्राउड मेंबर ऑफ द कैनेडियन पंजाबी ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन CPBA।
10: गल मिठी मिठी बोल, दस कानो विच गोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू ही डोल।
11: हुन ता गल्ला मिठिया ही होन गिया गिल स्वीट फैक्ट्री दे नाल। जे तुसी आनंद लेना चाहंदे हो लजीज मिठाइयां दा, लाजवाब वेजिटेरियन खाने दा, ते टोल वजा के दस दो सारियां नू पहुंचो गिल स्वीट फैक्ट्री, जो सर्व कर देने थानू दो लोकेशन तो, ब्रैम्पटन विलियम्स पार्कवे एंड एयरपोर्ट रोड अते फ्रेश को मिल्टन दे विच। ज्यादा जानकारी ले विजिट करो gillsweetfactory.com, gillsweetfactory.com। जिंदगी दी मिठास गिल स्वीट फैक्ट्री दे नाल। आहो
3: विजिटर टू कैनेडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स, बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे, या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो, तो हुणे कॉन्टैक्ट करो 647-400-6862, 647-400-6862।
12: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मंग, हुणे ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना व्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कैनेडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।

0: ਆਪ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: study visa express entry canadian express entry spousal file parents pr super visa nanny work permit farmer investor ya self employed di file gal ki immigration di har problem da solution lain layi community de jane pehchane ate tajrubekar immigration consultant gary wirk nu milo
3: koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya hove immigration da koi bhi masla hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha cic immigration hune hi call karo 416-456-6
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381
4: ਨਾਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-455-3381 416-457-3381

0: Tommy Will live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto wale ready ho jao. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: दोस्तों देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो एएम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश परदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7